आप सुन रहे हैं रेडियो नारापणिपदा नाइट्स, एंड मैं यही कह रहा था कि मौसम कैसा है, मौसम के बारे में जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है ना यार। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि प्लान बनाते रहो और मौसम की वजह से प्लान जो है वो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मौसम का हाल जो है वो आज बाहर हल्की बारिश और तूफान इजायाज का असर है, लेकिन ये बारिश हमारे सूखे पड़े जलाशयों जैसे फॉल्स लेक के लिए वरदान साबित हो रही है। तो घर पर रहिए, चाय की जो है एक बढ़िया प्याली लीजिए, चाय का आनंद लीजिए, एंड मस्त चाय की प्याली पीते पीते सुनिए रेडियो नायरा, क्योंकि गाने जो है वो सदा बाहर लेके आता हूँ सिर्फ आपके लिए। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल, क्योंकि अगर बारिश हो रही है उसमें आप बाहर निकल रहे हो और प्लान में मज़ा नहीं आ रहा है तो जिम्मेदार कौन है? आप ही हो, इसीलिए घर बैठिए और मज़े कीजिए।

0: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
1: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
2: When was the last time your apartment community had a full-size climbing wall, retro arcade games, and a sports bar? Not just a leasing office and a mailroom. Welcome to Novel Morrisville, located right next to the Weight Competition Center. When you're off the clock, grill out at the outdoor chef stations, relax by the resort-style pool, or recharge at the on-site coffee shop. Enjoy a half-mile trail, a 2,880-square-foot private dog park, and a pet spa. Plus modern studio, one, two, and three-bedroom homes. For a limited time, receive 10 weeks free base rent, plus an electronic gift card of up to $1,300 when you tour and lease this week only. Visit 909 Athletic Lane in Morrisville. Call 984-465-7758. Or explore novelmorrisville.com today. Novel Morrisville, your version of play starts here. Offer available on select homes. Minimum lease term applies. Other costs and fees are excluded. Contact the leasing team for complete offer details.
3: अच्छा सुनो, you are coming for Tanishq's Rally Trunk Show na?
4: कब?
3: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
4: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
3: ठीक है, संडे देन. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

रबर निर्मला नाइट्स एंड खेल के मैदान में और एक धमाका हरिकेन्स की शानदार जीत आइस हॉकी के दीवानों के लिए अभी भी जश्न का मौका है। कैरोलाइना हरिकेन्स ने शिकागो ब्लैक हॉक्स को 5-2 से हराकर एक और शानदार जीत अपने नाम कर ली है। जैक्सन ब्लैक और जॉइन मार्टिनुक ने शानदार गोल की बदौलत टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में है। मतलब फॉर्म के बारे में बात करूं तो ऐसा फॉर्म है कि क्या ही बात करूं। तो ये जीत सेलिब्रेट करता है नायरा आपके साथ एंड करता है विजेता टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है एंड जिस तरह से त्योहारों का मजा आ रहा है क्या ही बताऊं मैं, क्या ही कहने, हर तरफ धन यही सुनाई दे रहा है। सुना जा रहा हूं आपको अगला ही गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारायणपुर वाला नाइट्स एंड रैली के मशहूर पुलेन पार्क की बहुप्रतीक्षित इवेंट हॉलीडे एक्सप्रेस के लिए टिकटों की बिक्री इस हफ्ते 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी दिसंबर में ये पार्क रोशनी और जादुई हॉलीडे लाइट्स से जगमगा उठेगा, जो परिवारों के लिए एक बेहद खुशनुमा अनुभव होने वाला है। इसलिए आप जा सकते हैं एंड जो जो लोगों ने ये इवेंट मिस कर दिया था उनके लिए तो ये एक सुनहरा अवसर है। आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं एंड यू नो लाइक मजे ही मजे है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिता नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा सेगमेंट का यानी बॉलीवुड म्यूज सुनाने का। तो मैं यही कह रहा था कि हैप्पी बर्थडे टू बिग बी, महानायक अमिताभ बच्चन हुए 84 ईयर्स ओल्ड के छालिया। शुरुआत करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बड़ी खबर से। आज बिग बी अपना 84th जन्मदिन मना रहे हैं, एंड कल रात से ही मुंबई के उनके घर जलसा के बाहर हजारों फैंस की भारी भीड़ जुटी थी। बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई बस एक ही नारा लगा रहा है कि हैप्पी बर्थडे शहंशाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स। नायरा विश करता है अमिताभ बच्चन को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बने रहिएगा रेडियो नारा पर भाई, पक्का देसी तो हाई, पक्का लोकल भी हाई।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.
2: Haan. Haan. Sudhu musayara.

अमिताभ बच्चन सर के बारे में क्या ही कहूँ मैं, मतलब क्या इतने सारे रोल, इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर, उसके बाद बोलने का एसेंट भी अलग, सो इट्स लाइक गाने सुपर हिट, ही इज द यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं अमिताभ सर के बारे में कुछ बात कर पाऊँ, लेकिन फिर से एक बार रेडियो नायरा हैप्पी बर्थडे करता है अमिताभ सर को, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अमिताभ बच्चन सर। तो मैं यही कह रहा था कि दृश्यम 3 के बारे में बात कर रहे थे, अजय देवगन और तब्बू की थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर मतलब इतना तहलका मचा रही है। आज अपने दूसरे वीकेंड में इस फिल्म ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी कर ली है। थिएटरों में लोग खींचे चले आ रहे हैं और विजय सालगांवकर का जादू एक बार फिर सबके सिर चढ़कर बोल रहा है कि आली रे आली, अच्छा माची बारी आली।

वेलकम बैक टू एवरीबडी, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड इंटरनेट पर छा गया शाहरुख रणबीर और आलिया का मजेदार डांस वीडियो। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो इतना वायरल हो रहा है जिस वीडियो में बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े खिलाड़ी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और शाहरुख खान एक नए कमर्शियल एड में एक साथ नजर आए हैं। मजेदार बात यह है कि वीडियो के एंड में ये तीनों खिलाड़ी 786 के सुपरहिट गाने हुक्का बार पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। फैंस इस तिकड़ी को देखकर दीवाने हो रहे हैं और इंटरनेट पर कमेंट्स की तो ऐसी बरसात हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, एंजॉय करते हैं ये अगला गाना ऐसा है कि जो आपकी इस शाम की वाइब तो सेट कर ही देगा। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड आलिया भट्ट की नई फिल्म डोंट बी शाय का धमाका ओटीटी पर मचाया गदर। जी हाँ, ग्लोबल आलिया भट्ट इन दिनों अपनी नई फिल्म डोंट बी शाय को लेकर सुर्खियों में है, जिसे आलिया भट्ट ने ही प्रोड्यूस किया है। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस कमिंग ऑफ इज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। एंड हाल ही में मुंबई में इसके जो प्रीमियर पर पूरा भट्ट और कपूर परिवार आलिया को सपोर्ट करने पहुंचा था, जहां आलिया के लुक ने सबका दिल जीत लिया था। एंड आलिया इट्स लाइक वॉज ए डायल, आलिया जो भी करती है ये चैलेंज लेके करती है एंड उस रोल में खुद को ढाल लेती है। तो यही बात है यार, मतलब मेहनत करो, मेहनत करना ज़रूरी है। और बने रहिएगा रेडियो नायरा। All right.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा निर्मदा नाइट्स एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में आ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार कैटरीना कैफ और कृति सैनन जैसी जो अभिनेत्रियां हैं उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, जिस पर मृणाल ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हमेशा किसी ना किसी बात पर जज करना लोगों की आदत बन चुकी है, लोग सच में पागल है। मृणाल के इस करारे जवाब की जो है तारीफ भी हो रही है, ट्रोल भी हो रहा है। तारीफ होना, ट्रोल होना, ये तो चलती रहेगा यार, ये चलता ही है और चलते रहेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मल नाइट्स एंड कैसे चल रही है आपकी आज की इवनिंग। बाहर मौसम जो है वो बारिश का हो सकता है, इसलिए घर पे बैठ के बढ़िया से आप लोग मजे कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर। रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाणा नाइट्स एंड मैं यही कह रहा था कि इट्स लाइक यार ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग जितनी करोगे ना आप उतना सोच के गहराइयों में डूबते जाओगे एंड मिलेगा कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगेगा, उल्टा सवाल जो है वो बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड चैन की नींद सोना है यार। आप सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाणा नाइट्स, आप हमारे रेडियो नारा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, एप्लीकेशन मिल गया आपको, उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के अनलिमिटेड फन से भरे शोज एंड एंजॉय कर सकते हैं म्यूजिक को भी। शर्त इतनी है कि बस आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो अभी के अभी हमारा रेडियो नायरा का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं हमारे चैनल को। सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स में यही कह रहा था कि अब वक्त हो चुका है डिनर करने का, अपने लव वंस के साथ कुछ बातें शेयर करने का, एंड बहुत अच्छा ये वक्त होता है ना। तो यार वही ओवरथिंकिंग ना कीजिए, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ओवरथिंकिंग लाइक ट्राई करो यार कैसे रिड्यूस कर सके, मेहनत पूरी तरह से करो, ओवरथिंकिंग ना करो एंड अच्छी नींद लो, यही मोटो है। तो मैं यही कह रहा था कि 7 से 10 का अगेन ये टाइम आप लोगों के साथ कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, इस शो पर 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। एंड एक बार फिर से रेडियो नायरा आपको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहा है। एंजॉय करते हैं ये अगला गाना एंड कल मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा, गरबा खेलिएगा, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira pe kho jao Pakka Desi.
2: आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जान कॉलवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with गीत बाजार.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek

0: सच है क्या, सब सच है।
1: है जिंदगी ये ख्वाब के है ख्वाब जिंदगी। बड़ी मजे की बात है कि यह हकीकत किसी को पता नहीं कि जिंदगी जिसमें हम जी रहे हैं ये जिंदगी है या जिंदगी वो जो हम ख्वाब में जी रहे हैं। है जिंदगी ये ख्वाब के है ख्वाब जिंदगी, जिस समत भी जाओ तो हकीकत ही लगे है। अभी तो ये लम्हा सच लग रहा है हमको, जो दो घंटे दो मिनट में गुजर जाएंगे आपकी फरमाइशों के करम से, तो वो फिर आगे चलकर ख्वाब बन जाएंगे। ऐसा ही है, एक एक मिनट हकीकत से ख्वाब में चलता रहता है, और फिर क्या होता है इसके बाद के, फिर याद आता है वो ज़माना गुजरा हुआ। जैसे कि अब ये फरमाइशें हैं एक से एक लाजवाब, बिल्कुल खूबसूरत ख्वाब की तरह। जो पहली फरमाइश आपने समाप्त फरमाई चरणजीत लालियन कंचन लाल जी की थी, या दूसरी फरमाइश ऑफ कोर्स ज्योति करीर की होगी नवरात्रि के मौके पर। नवरात्रि शायद आज ही तो शुरू हो रही है मुझे लगता है। वी आर योर होस्ट अफरोस्ता जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी, 10 से 12 हम सुबह, 10 से 12 हम शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
2: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
3: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
1: Ae maa tere dam se hi hain duniya ki taakatein. समाप्त फरमाइए ज्योति करीर जी ने जो ये नगमा भेजा है खास कर नवरात्रि के मौके पर। तो समाप्त फरमाइए मेरा शेर, ऐ माँ तेरे दम से ही हैं दुनिया की ताकतें, सब शेर तेरे सामने नौकर बने हुए। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

माँ तेरे हाथ थाम के गिर गिर के चले हैं, अरे माँ तेरे हाथ थाम के गिर गिर के चले हैं, क्या देवता क्या औलिया सब तेरे पले हैं। आनंद बख्शी का कलाम, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी। आशा फिल्म का नाम था, 1980 की ये फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। इसमें मोहम्मद रफ़ी एंड चंचल की आवाज़ें थीं, दोनों ही बुलंद आवाज़ें, क्या बात है। ज्योति करीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये फरमाइश नवरात्रि के मौके पर भेजी। सबको नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो। और अब लीला तेजानी की जानिब से, जमैका से, न्यूयॉर्क से एक फरमाइश आई है नूर जहाँ की, क्या बात है। और उसके साथ ये दर्द भरा शेर भी सुन लीजिए, जो हकीकत है इसमें, इसमें कोई शक नहीं, ये कुदरत है। उसने चुना है चांद जो करता है अनसुनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चकोरी जो है उसको उर्दू में कुमरी भी कहते हैं, कमर की वजह से। उसने चुना है चांद जो करता है अनसुनी, कुमरी ने भला ऐसी मोहब्बत ही क्यों चुनी।

0: भीगे हुए बालों से कतरे टपक रहे हैं। आपको तो सीन याद होगा, चलती का नाम गाड़ी, फिल्म का नाम था ये भीगे हुए बालों से कतरे टपक रहे हैं, और सीखे न जो धड़कना वो दिल धड़क रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम, एस डी बर्मन की मौसीकी, चलती का नाम गाड़ी 1958 की ये फिल्म थी। किशोर कुमार की आवाज़ में नवाब का समा तमाया मोहतरमा कंचन लाल जी, मोहतरम चरणजीत लाल जी की फरमाइश पर, समृद्धि ठाकुर साहिबा आपकी फरमाइश सराखों पर, और इतना अच्छा माहौल है, लेकिन हमें ये भी कहना पड़ता है कि खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, और जहाँ बजती हैं शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। देखिए आप, समृद्धि ठाकुर साहिबा ने अपनी अमृता काकी के निधन पर ये नगमा भेजा है जो उनका पसंद का था।
1: और अफरोज भाई समृद्धि जी लिखती हैं कि आई विल ऑलवेज चेरिश हर मेमोरीज, स्पेशली हर फेथ इन गॉड, हर लव फॉर लाइफ एंड हर जेनरोसिटी टुवर्ड्स मी। ये समृद्धि ठाकुर लिखती हैं अपनी अमिता काकी की याद में। उनका न्यू जर्सी में देहांत हो गया था जस्ट ऑन अक्टूबर 4th, सो प्लीज एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेस समृद्धि जी, एंड वी आर हैप्पी टू प्ले दिस सॉन्ग इन मेमोरी ऑफ योर आंटी।
0: हम तो दुआ करते हैं कि सारे हमारे लिसनर्स हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा के लिए हयात रहें, जब हम जाएं तो उसके बाद देखेंगे। हम चले जाएंगे पर जिंदगी रह जाएगी, अरे हम चले जाएंगे पर जिंदगी रह जाएगी, जो कि दिल में दोस्तों के याद सी रह जाएगी।

0: कहता ना था चलती नहीं तकदीर के आगे, अरे कहता ना था चलती नहीं तकदीर के आगे, और फिर आज रोते हो मेरी तस्वीर के आगे। तनवीर नकवी का कलाम था, एस मोहिंदर की मौसीकी, शीरिन फरहाद फिल्म का नाम था, जिसे पहले अर्ज किया जा चुका है, 1956 की फिल्म थी। लता मंगेशकर, बहुत बहुत शुक्रिया। समृद्धि ठाकुर साहिबा।
1: एंड फरोजी, सेवरल लिसनर्स हैव रिसेंटली आस्क्ड इफ दे कैन सबमिट रिक्वेस्ट एंड हाउ टू सबमिट रिक्वेस्ट टू गीत बाजार। सो the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And on today's community calendar, we have a very special new announcement, and that is that if you are interested in studying Hindustani vocal classical music, you can do so with our brand new professor here at UNC, Dr. Tomal Hussain. Dr. Tomal Hussain has a PhD in music and musicology and has 16 years of experience teaching Hindustani vocal music. He is offering group classes at multiple levels, both in person and on Zoom. For more information, check out the following website, bit.ly/TomalVoiceLessons. That's bit.ly/TOMAL Voice Lessons. And the NC Dashera Festival, the Ram Leela and the Ravan Dahan will all be taking place on October 24th, 2026. And that will be great. There are garam garam jalebiyan and all kinds of snacks. And then the show, which features episodes from the story of the Ramayana, from Ramji's childhood all the way to the victory in Lanka. You can catch it all at HSNC 309 Aviation Parkway in Morrisville, North Carolina. The Mela starts at 4 p.m., the Ramlila starts at 5:30 p.m., and the Ravan Dahan will be approximately 8:30 p.m. So come on down and check it out. For more information, you can contact Saroj Sharmaji at 919-656-5224 or Sushma Maheshwari Ji at 919-880-8529.
0: आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, जिस तरह से के पूर्णिमा गुप्ता की परीक्षा सर आंखों पर। इस वक्त वो भारतवर्ष में है, यानी हिंदुस्तान में, यानी कि इंडिया में, यानी कि बहुत से नाम हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पर मौजूद हैं और वहीं से हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं और वहीं से उन्होंने ये आवाज़ भेजी। वो अपनी आवाज़ में ही अपनी फरमाइश करती हैं और हमारा इम्तिहान लेती हैं और कहती हैं कि बताओ ये कौन से गाने की लाइन है। अभी तक तो हम समझते हैं कि उनकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं, यानी कि हर परीक्षा उनकी ठीक से हम पेश कर रहे हैं। देखते हैं इस बार की परीक्षा। सुनिए मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की आवाज हिंदुस्तान से।
2: चौरंगी में।
0: वाह क्या बात है। एक बार और जरा अपनी आवाज सुनाइए तो ताकि मैं हिसाब लगा सकूं कि कौन सा नगमा है।
2: चौरंगी में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, फिल्म का नाम तो पता लग गया हमें। ये देखिए आप, और हम आपको एक शेर सुना दें और देखें आपके ख्याल से हम कहां तक आपकी परीक्षा के करीब पहुंचे। ये लीजिए। चली जो मनाने को एक वो दीवानी, अरे चली जो मनाने को एक वो दीवानी, हुआ घुटनों घुटनों ये अश्कों का पानी।

बाकी नजर जब मिलाने चली, समाज फरमाए कि वो बाकी नजर जब मिलाने चली, बना के न क्या क्या बहाने चली। खातीनों हजरात, गुलजार का कलाम था, आप ये तो बता सकते हैं खुद ही। मौसीकी आर डी बर्मन की नमकीन फिल्म का नाम था, 1982 की ये फिल्म थी। आशा भोसले एंड शबाना आजमी, इन दोनों की आवाज़ें थी। तो आप पता लगा सकते हैं किसमें शबाना आजमी कब बोल रही हैं और कब आशा भोसले। पूर्णिमा गुप्ता जी, आपकी हर फरमाइश सर आँखों पर, जल्दी तशरीफ लाइए, गीत बाजार आपका मुंतजर है। और अब हम मोहतरम जनाब चंद्रजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश लिए बैठे हैं एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से। जादू जो मुझ पे चल गया जादू की तरह है, जादू कुछ तो नकली होते हैं और कुछ जादू की तरह जादू चल जाते हैं। जादू जो मुझ पे चल गया जादू की तरह है, पहले मुझे जादू की तो पहचान ही न थी। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

तेरी अदा गेसु तेरे चेहरा परी कहें। जरा समझ फरमाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन नया अंदाज है। तेरी अदा गेसु तेरे चेहरा परी कहें, ये सब कहें पर हम तेरी जादूगरी कहें। खातिन हज़रात, केदार शर्मा का कलाम था, पंकज मलिक की मौसीकी, ऑफ कोर्स 1940 का ये नगमा था, 1940 का फिल्म का नाम था जिंदगी, और के एल सैगल की आवाज़ थी। आपको अंदाज हो रहा होगा मैं कौन से नगमे को गाने जा रहा था, लेकिन उससे शायद आप कंफ्यूज हो जाते। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी ने मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से आपने नगमा समाप्त फरमाया। आप ड्रम से मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा की फरमाइश। मालिक मेरी ये इल्तजा अब तू कबूल कर, अरे मालिक मेरी ये इल्तजा अब तू कबूल कर, सबसे हसीन हैं हम न कहें फूल फूल कर।

बंदे वही जिनके अजब धंधे हुए, बंदे वही जिनके अजब धंधे हुए, और आज के अखबार सब गंदे हुए। भरत व्यास का कलाम मौसीकी थी वसंत देसाई की। क्या बात है, बहुत दिन के बाद इनकी मौसीकी को सुनने का मौका मिला। दो आंखें बारह हाथ, ये फिल्म का नाम भी है 1957 में, और साथ साथ ये सीमा फारूकी का अंदाज भी है। इतनी मेहनत करती हैं, इतने काम करती हैं कि दो आंखें बारह हाथ। गुलूकारा इसकी हैं लता मंगेशकर। मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हर फरमाइश सनाकों पर। जैसे कि फरहत नकवी ने एक नगमा भेजा है, बड़े प्यारे नए अंदाज में, बड़ा भोला और इनोसेंट नगमा है सत्येंद्र सरताज की आवाज़ में। तो हम फरहत नकवी जो कनाडा में टोरंटो में हैं उनको डेडिकेट करते हैं उनकी गुजारिश पर। तुझको मिले या ना मिले ख्वाहिश ज़रूर कर, सुनते रहिएगा। कि तुझको मिले या ना मिले ख्वाहिश ज़रूर कर, एक बूंद की बारिश की गुजारिश ज़रूर कर। यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

0: निशानी देख ओ जानी मुझे शर्मिंदा ना कीजो। अरे निशानी देख ओ जानी मुझे शर्मिंदा ना कीजो। कहानी मर भी जाए तो उसे फिर जिंदा ना कीजो। आनंद बख्शी का कलाम मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की, मेरा गांव मेरा देश 1971 की ये फिल्म है। We are your host Afrosta, John Corwell and Ravi Chirukudi.
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: You're listening to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham,

वफादारियां सभी आसान होती। अरे वफादारियां सभी आसान होती, हसीनाएं अगर न बेईमान होती।

जफाएं मिलें या वफाएं मिलें, मगर हम जिए जा रहे हैं। जफाएं मिलें या वफाएं मिलें, हम जिए जा रहे हैं। और जहर में दवा या दवा में जहर, हम पिए जा रहे हैं।

बेकैफ जिंदगी है सरकारे मदीना, बेकैफ जिंदगी है सरकारे मदीना, दिल को तेरी कमी है सरकारे मदीना।

0: बेकरारी काश ना जाती जो वो आती नहीं। समाप्त फरमाइएगा, जरा सा मुश्किल भी हो सकता है। बेकरारी काश ना जाती जो वो आती नहीं, जब करार आया तो हाय बेकरारी बढ़ गई।
1: यू आर लिसनिंग टू गी।

वो बेवफा बना जो वफा गैर से करे। ये सच बात है कि इंसान उसके लिए बेवफा हो जाता है जिसके साथ वफादारी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए, वो बेवफा बना जो वफा गैर से करे, अगर वो ही वफादार है तो बेवफा है कौन।

तेरे साथ मेरा नाम जुड़ा है। समझ फरमाए, छोटा सा शेर है, तेरे साथ मेरा नाम जुड़ा है यानी मैं बेनाम हुआ हूँ। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

इस जीस्त की वफा से गुजारा नहीं मुझे। समाज फरमाइए कि इस जीस्त की वफा से गुजारा नहीं मुझे, कातिल की बेवफाई के मारा नहीं मुझे।

0: खुश होते मुझे देखकर जलते हैं क्यों सभी। खुश होते मुझे देखकर जलते हैं क्यों सभी। और शादी नहीं हमारी किसी और की सही।
1: यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

किसके वो इंतजार में बरसों से खड़ी है, अरे किसके वो इंतजार में बरसों से खड़ी है, आंसू बरस रहे हैं या सावन की झड़ी है। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

दीवानगी में चैन का कोई गुजर नहीं। समझ फरमाइए, अच्छा लगेगा आपको कि दीवानगी में चैन का कोई गुजर नहीं, और मिल जाए अगर चैन तो तू बा नजर नहीं।

ये देखें छोटा सा शेर अच्छा लगेगा कि सुन दिल के खामोश इशारे। अरे सुन दिल के खामोश इशारे, दिल का भी तो दिल है प्यारे।

0: से, अरे कोई जाके समझा दे बेवकूफ लड़की से, कोई जाके समझा दे। और क्यों मुझे वो लिखती है मेरे मन के शहजादे।
1: You are listening to Geet Bazaar.

बेखुदी में उन्हें, महबूब कह गया। अरे बेखुदी में उन्हें महबूब कह गया, अब सोचता हूँ मैं भी लो क्या खूब कह गया। खातीनो हजरात, अन्विता दत्त का कलाम था और रघु दीक्षित की मौसीकी थी। सब नए नए लोग हैं, बेवकूफियाँ ये फिल्म का नाम था और आवाज़ थी रघु दीक्षित की। और मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि बेखुदी में किसी को गलती से कुछ ना कह जाना, तो इसका मतलब ही आपको बेखुदी का हक नहीं है। इसी बात पर हम भी चलते हैं, और चलते चलते दामोदर पांडे जिन्होंने फरमाइश भेजी है बनारस रामनगर से, उनका ये नगमा, ये फरमाइश सुनवाते चलते हैं। उन्होंने कहा, आप ये बताइए, बेवफा बेवकूफ़ ही सब कर रहे हैं, लेकिन बेखुदी क्यों नहीं है? तो बेखुदी का हमने जिक्र तो किया था, तो अब ये लीजिए, वी आर योर होस्ट अफरोज ताज, जॉन कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। और साथ साथ कहूँगा, दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और मैं कहता हूँ अपना शेर चलते चलते, बेखुदी में कदम ना उठाना कभी, अरे बेखुदी में कदम ना उठाना कभी, अगर उठ गया फिर वो वापस ना होगा। मोहब्बत जिंदाबाद।

पर सड़ जाएगा। ए भाई मैं पिंकी में हूँ, क्यों एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नारा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तनिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, व्हाट हैपेंड।

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तनिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.
3: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, Pakka Desi, Pakka Local.

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है कुछ बन क्यों नहीं पाया तू।

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

के पीछे पीछे भागा। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा। 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है, तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस है। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी ना खेले, उन्हें फिर से जवानी दे दे रब, चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले।

हमें नहीं पता तंग कितनी वो रोड थी। घर वो जहाँ पे बस एक ही कमरा था, वहीं पे रसोई थी, वहीं पे था टॉयलेट। तुमने देखा मेरा स्टेज पे चिल्लाना, तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन, मायने किसी बजे के दाएं पुरु दाएं किसी बजे के दाएं, मायने किसी बजे के दाएं पुरु दाएं किसी बजे के दाएं, फिर थोड़ा अभी मायने के दाएं किसी बजे के दाएं किसी बजे के दाएं।
0: कुछ समझ में नहीं आया,
1: फिर से सुन। मायने किसी बजे के दाएं पुरु दाएं किसी बजे के दाएं, फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं किसी बजे के दाएं किसी बजे के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

0: मैं दगड़ू हुईगुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
1: Poo bai poo, fugadi poo, you like me and I like you too. Poo bai poo, fugadi poo, you like me and I like you too. Poo bai poo, fugadi poo, you like.

0: से तूने भरे ले पॉकेट। अरे वाड़ा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Oh bhai phu, phu gadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phu gadi phu, you like me.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

0: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं, और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
1: पेड फॉर बाय desiblue.org, नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कमिटी।
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
3: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
2: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
3: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: What if feeling better started with restoring your inner balance? Stress, emotional heaviness, low energy. Sometimes your body and mind are simply asking you to pause, reset and recharge. Discover Pranic Healing, a practical non-touch practice that works with life force to support greater calm, clarity, energy, and well-being. Experience it first at a free Twin Hearts meditation and healing session every Thursday at 7 p.m. Ready to go deeper? Join the beginner-friendly Level 1 Basic Pranic Healing class, September 26th and 27th in Kerry, or October 3rd and 4th in the Charlotte area. Tuition is $495. Pranic Healing complements professional care. Register at PranicHealingNorthCarolina.com or call 252-410-2268. Pranic Healing North Carolina. Restore your energy, restore your balance, rediscover yourself.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे उन्हें देना शौक इसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना